0: हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, बड़ा अपना बॉबी हाजिर हाँ थोड़े फेवरेट शो बॉबी पंजाबी टॉक शो इस लाइव वीडियो थानू मिलान जा रहा मैं अंकल हरवान सिंह चौहान जी ने। सत श्री अकाल अंकल जी।
1: सत श्री अकाल बेटा जी। रिस्पेक्टेड लेडीज एंड जेंटलमैन, रेजिडेंट्स ऑफ ग्रिफिथ, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड सिख नौजवान सभा के मैंबर्स सभना नू 2MOI की टीम वालों प्यार भरी सत श्री अकाल प्रणाम नमस्ते। लोकल कम्यूनिटी 2MOI की टीम वालों सभना नू प्यार भरी सत श्री अकाल प्रणाम नमस्ते। अज 21 अक्टूबर दिन वीरवार रात्रि दास एच एस चौहान 95.1 FM ते ऑन एयर आपकी सेवा विच हाजिर होया है। अज दास पंजाबी सोंग, हिंदी सोंग अते कुछ ट्यून्स सुना पेश करन दी निमाणी जी कोशिश करेगा। पहला गाना है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। इस निमाणी जी कोशिश है दास दी, दास को गीतकार नहीं है, आराधना फिल्म का गाना है।

दूसरा सॉन्ग है, इस सॉन्ग करण औजला जी का लिखा हुआ सॉन्ग है, बड़ा ही

वारे दशमेश पिता ने अज जीवत कई हजार कारगिल बिच जे डाती छाती तासी बन जाइए दीवार गुरवाणी दे लड़ लगे हाँ बाबे नानक दे पैरोकार हाँ हाँ भई हाँ तू शक है असी सरदार हाँ।